अरे तेरे की सवा इसके नाम से, मेरा नहीं काम ये आग का न पानी का, रोग ये जवानी का, जिसे लग जाता है उसे लग जाता है।

काटाल जेन कंकर कहानी है, झूठ का फसाना है, कैसा ये जमाना है, बिच्छू का बहाना।

0: उस्तादी दिखाओगे या कव्वाली शुरू करोगे?
1: अरे कव्वाली सुनाता हूँ, सुनो छोकरे लोग, आज ऐसा जम के बजाओ कि मेरी जोरू का तंबू हदर जाए।
0: और बहनों ऐसा गाओ कि मेरे मियाँ का झोपड़ा उड़ जाए।
1: बजाओ रे।

पर तुझको लाखों हलालों की हराम कमाई दिया और तू मेरे को ताना दे रही, दो बादाम खिला के बोल रही, अरे बादाम नो लाते कते संदक।

0: किस्मत को अपने आज मैं रोती बैठ को।
1: अरे पगली, अगर मैं तेरे को हंसाया तो फैमिली प्लानिंग वाले रोएंगे ना। तू जानती है तू कौन है?
0: क्या हूँ?
1: चिकनी मछली।

0: अच्छा पंजाबी भाषा से गाना होंगे?
1: नहीं
0: नहीं गुजराती भाषा तो होंगे।
2: नहीं हम क्या, हम क्या

0: बातों में जो हाथ है जीवन भर का साथ है, सीधी सच्ची बात है कहानी ना समझो।
1: आई आई आई। सुकू, सुकू।
0: आई आई आई।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: अच्छा, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात कम्प्युटरसह उत्तम ज्ञान मिळवायचंय, तर मग MSCIT शिका आणि AI आणि इंटेलिजंट टेक्नॉलॉजी सह प्रॅक्टिकल आणि डिजिटल स्किल शिकण्याची सुवर्ण संधी मिळवा। त्यासाठी जरूर संपर्क साधा एज्युकेअर कम्प्युटर्स, प्रभू अपार्टमेंट, दुर्गा कॅफे जवळ, KBT सर्कल, गंगापूर रोड, नाशिक। संपर्क 98 50 84 0520 आणि 98 349 52 278।

0: अच्छा पंजाबी भाषा से गाना होंगे?
1: नहीं, बंगाली।
0: नहीं नहीं, गुजराती भाषा तो होंगे?
1: नहीं।

किसकी जान लोगी, क्या इरादा है? हमको तो बर्बाद किया है, और किसे बर्बाद करोगे? हमको तो बर्बाद किया

0: हाँ तो नैनों में
1: बिंदिया है,
0: माथे पे
1: बिंदिया है,
0: तो बालों में
1: गजरा है,
0: आँखों में
1: गजरा है।